भावार्थ दासबौद्ध निरपणकार पन्नाकर देशपांडे भाग 204 दशक 15 समास 8 सूक्ष्म जीव निरूपण नाम समास।

है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां,

0: मदन को देवर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।